0: ये है
1: Like our radio.
2: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
3: No more worries for me.
4: Southall Travel, at all protected.
5: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां. मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से.
6: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
7: खुद से भी ज्यादा.
5: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में.
7: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है.
5: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media.
8: You know, I fans shout at football matches.
9: Oh, wake up!
8: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
4: Catch the legend, Ravi Sharma, every weekday morning at 9 a.m. Like a radio.

0: Leica Radio. भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
1: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes, because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
3: 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: रेडियो
1: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आवर रेडियो सेल्स ऑन 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
2: Serving you through the night and early morning. This is Laika Radio Midlands.

गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को एक हादरा दूर।

मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पथ्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंधगोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाथ, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोला खोए लख होवें लखवीस, लख

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती छित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए।

0: प्यार।
1: अय्या सुकु सुकु
0: अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु खो गया दिल मेरा सुकु सुकु।

0: आज कुछ ऐसा ही मौसम है और एक बार फिर से मौसम अच्छे मौसम की तरफ, अच्छे टेम्परेचर की ओर जा रहा है। ये गीत हमने आपको आराधना फिल्म से सुनवाया, जिसमें म्यूजिक था SD बर्मन का, और उससे पहले सरगम फिल्म का गीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के म्यूजिक से सजा हुआ, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाजों में। तो लीजिए, दो रफी जी और लता जी की आवाजों के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम, और आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद रेडियो जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स, और जहां कहीं भी हमारे साथी हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का स्वागत है इस शो में। सैटरडे का दिन है, लीजिए एक बार फिर से द रितु शर्मा शो की शुरुआत हो गई है, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया है, आपसे हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो गया है। आपके ढेरों ढेरों मैसेजेस पहुंचे हैं जिन पर जरूर नजर डाली जाएगी, लेकिन हमेशा की तरह आज भी क्लासिक्स बजते हैं, सुनवाती रहूंगी, आप बस यूं ही हमारा साथ देते रहिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज वन पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 127.2 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। और इसके अलावा आपको बता दें कि जून से पहले पहले अगर आप ऐप या फिर ब्रांच या फिर ऑनलाइन भारत पैसा भिजवाते हैं तो आपको मौका मिल सकता है 75 पाउंड्स का वाउचर जीतने का हर दिन जब आप 1000 पाउंड्स से ज्यादा पैसा ट्रांसफर करते हैं, या फिर 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशंस ड्यू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो लीजिए, फुटबॉल प्रेमियों के लिए तो बड़ी ही खुशी की बात है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू हो चुका है, और आज जिन टीम्स के बीच में मैच होने वाला है वो है ग्रुप बी की टीम कतर और स्विट्जरलैंड, और ग्रुप सी की टीम ब्राजील और मोरक्को। इन दोनों के बीच में मैच होगा, तो देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। लेकिन उसके अलावा हम आपको याद दिलाएंगे कि आप भूलिएगा मत, बिल्कुल आप रैक लो जो कि हमारे शो इस अपडेट्स के स्पॉन्सर हैं, उनसे 15 मिनट की फ्री लीगल एडवाइस आप ले सकते हैं जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Lister, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो Falcon Cash and Carry.
3: Samara Black Tea 1 kg 3.99. Elephant Medium Atta 25 kg 14.99. Falcon Brown Sugar 3 kg 3.99. Leela Basmati Rice 10 kg 11.99. Suhana Khamand Dhokla 500 gram 1.99. Falcon Red Lentils 1.5 kg 24.399. Parle Jee Multipack Biscuit 799 gram 199. Falcon Lemon Juice 250 ml 3 for 1. Falcon Cash and Carry
4: 82 Assistant Street LE12JU ya Rowlett Hill LE54UN.
3: Big deals, big savings while stocks last.
5: Surrenderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Dizzy Panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surrenderella goes back into the Bollywoods. Radio partner Leica Radio.
6: Father Sandhu Bond jitlo special che, itli j special film avi rahi che.
7: Uncle, tame pehla thi awaaz cho.
8: Awa itli keva.
9: Dharma Productions presents Zindagi Once More.
10: Maro baap banwani koshish kare tu.
2: બુદ્ધિ વેચી આવ્યો છે તું? અરે જિંદગી એવી મોજ થી જીવજે કે જિંદગી ખુદ તને આવી ન પૂછે.
6: આ ફાધર્સ ડે ફીલ ધ ઇમોશન્સ લવ એન્ડ ફેમિલી મોમેન્ટ્સ વિથ જિંદગી વન્સ મોર ઇન સિનેમાઝ ઓન 19 જૂન. ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયા ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ.
2: તો થઈ જાય જિંદગી વન્સ મોર.
8: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
1: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02030773633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल Mantra.
9: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad ab pehli baar London mein dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July Eventim Apollo Hammersmith. Hamare Ram.
10: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamare Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
9: Exclusive radio partner like our radio.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
13: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure. Ho jaye happy soul.
14: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
13: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
15: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
16: माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए.
17: हो हो अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊँगा.
18: नाम परशुराम. अधर्म का करता हूँ काम तमाम.
16: अरे कहाँ हो तुम?
17: हो आलो आलो.
18: परिवार उसके लिए चारों धाम. बाहर वो है परशुराम.
19: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsav Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE 392.
20: Have you noticed the way fans shout at football matches?
21: Oh, wake up!
20: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
9: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7 and with your favorite presenters live? Get the tune in details at leicagold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
22: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: भाई वीकेंड पर अगर आपका भी प्लान है अपनी सजनिया या अपनी दुल्हनिया को ले जाने का, तो हमारी ओर से आपको ढेरों ढेरों बधाइयां। अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में था ये गाना, जब प्यार किसी से होता है, सलमान खान और ट्विंकल खन्ना की फिल्म। और इसी गीत को आप सबने पसंद किया है, 90s का गीत था और गीतों का सिलसिला शुरू हो गया है। आपके ढेरों मैसेजेस मुझे लगातार मिलते जा रहे हैं।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो चलिए अगला एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनवाने से पहले एक नजर आप सभी के मैसेजेस पर डाल ली जाए। थैंक यू प्रकाश सुथार जी, नॉर्थ होल्ड में आप हमारा साथ दे रहे हैं, अभी भी जुड़े हैं हमारे साथ। थैंक यू प्रज्ञा, कहती है ऋतु आ गई रे, ऋतु आ गई रे, अरे ये तो कविता बना दी आपने मेरे नाम से। थैंक यू प्रज्ञा साथ देने के लिए। थैंक यू तोची पनेसर जी, अनिल सोनी वियाना में सुन रहे हैं। थैंक यू विजय गुडूरी जी, आज भी आपने एक बहुत ही सुंदर आज का विचार हमारे साथ शेयर किया है और उसमें लिखा है कि जिंदगी एक किताब की तरह है, हर दिन एक नया पन्ना है, जो बीत गया वो सिर्फ अनुभव है, जो मिल रहा है वो उपहार है, और जो आने वाला है वो एक उम्मीद है। और बस इसी उम्मीद के सारे हंसी खुशी जीवन जीते रहिए और जब भी समय मिले हमारा साथ देते रहिए। थैंक यू विजय गुडूरी जी, प्रोग्राम में स्वागत है आपका। थैंक यू भरत गंगाराम जी, गुड वाली मॉर्निंग हमारी ओर से आपको भी और आपका भी स्वागतम। महेंद्र बाजारिया जी हैरो में है हमारे साथ। हरीश खत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, अर्जुन जी, हरीशुदा, दिनेश पोपट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव पटेल जी को थोड़ी सी पैरों में प्रॉब्लम है, इसलिए फीट अप करके आराम करते हुए यहाँ से बजने वाले गीतों को एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि रिलैक्स कर रहे हैं। तो बस हमारे साथ गीतों को सुनने का जो रिलैक्सेशन है उससे अच्छा और कहाँ हो सकता है। थैंक यू राजीव जी। सहर जी, राजेंद्र कालरा जी, संतोष जी, अरुणा जी, जासू जी, मिसेस शेख, महेंद्र पटेल जी, मालती जी, उल्लास जी, थैंक यू एंड थैंक यू राजेश जी, कहते हैं आपको बहुत ही खुशहाल शनिवार की सुबह की शुभकामनाएं, जो धूप, नीले आसमान और सफेद फुर्तीले बादलों से भरी है। क्या बात है, क्या एनालिसिस है, थैंक यू। और आप लिखते हैं कि हम शांति और सुख की, शांति और खुशी की तलाश कहीं और करते हैं, जबकि हम इसे पाने के लिए अपने अंदर गहराई से खोज सकते हैं। गहरी बात है। थैंक यू राजेश जी। मिसेस पेकी चियांग आप हमारे साथ हैं, और जितने भी साथी घर में, गाड़ी में, काम पर, गार्डन में, जहां भी साथ दे रहे हैं, मेरी ओर से ये गाना आप सबके लिए।
1: ये है लाइका रेडियो टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: 1986 की फिल्म जांबाज से लिया था ये गाना कल्याण जी, वीर जी शाह और अनंत जी वीर जी शाह के म्यूजिक पर मनहर उदास और साधना सरगम की आवाजें आपने सुनी। और आपके मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं। मितुल पटेल कहते हैं कि मैं तो ट्रेन में आपका साथ दे रहा हूँ, तो ट्रेन वालों का भी स्वागत है। और निर्मला जी कहती है हम तो कार में है, तो कार वालों का स्वागत तो मैंने पहले ही कर दिया है। साथ देने के लिए थैंक यू। रोशनी आप हमारे साथ हैं। हिमांशु पटेल जी थैंक यू। शेखर आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मैसेज के लिए। और विजय गुनोवा जी, रागिनी जी, किरण जी आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं। एंड भारत से गिरीश जी भी शो सुन रहे हैं और कहते हैं वीकेंड का लंबा इंतजार रहा, अब आनंद आएगा आपके शो में। क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोशिश तो यही करूंगी कि ऐसे गाने सुनवाऊं, कुछ ऐसे गीत बजाऊं जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं और आपको आनंद से भर दें। चलिए इसी कोशिश में सुनवाती हूं अगला गाना, लेकिन उससे पहले
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
0: आपको याद दिलाते चलें कि लाइका रेडियो नेटवर्क तारीख खलाल के साथ मिलकर एक बार फिर से लाइव ब्रॉडकास्ट करने जा रहा है। और ये सब हो रहा है क्योंकि उनकी नई ब्रांच खुल रही है रेनर्स लेन में। और ये सब होने जा रहा है वेंसडे 17 जून को। एड्रेस है 297 रेनर्स लेन पिनर HA5 5EG। और तारीख खलाल वालों ने कहा है कि पहले जो 100 कस्टमर्स हैं उनको चांस मिल सकता है एक गोल्डन टिकट जीतने का, लेकिन ये सब होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। और अगर आप £1 भी स्पेंड करते हैं तो आपको मिल सकता है £50 वर्थ ऑफ फूड आइटम्स, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई रहेंगी। याद रखिए लाइका रेडियो नेटवर्क वहां से लाइव ब्रॉडकास्ट करेगा और हमारी टीम वहां पर रहेगी सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक।
2: ये है लाइका रेडियो। Across the लाइका रेडियो नेटवर्क, दिस इज रितु शर्मा। Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और चलिए आपको बताते चलें कि भाई हॉलिडे जाना चाहते हैं, समर चल रहा है, तो जरूर साउथ ऑफ ट्रैवल को याद रखिए, उनके साथ टिकट्स बुक कराइए। उन्हें फोन कीजिए 0208-574-8410 पर या फिर विजिट कीजिए साउथ ऑफ ट्रैवल, क्योंकि न सिर्फ वो टिकट्स बुक कराते हैं बल्कि उनका जो पैकेज है उसमें होती है इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल एंड ये सब है इट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. The Ritu Sharma Show on Leica Radio. Leica
3: Radio. 105 શોઝ પૂરા કર્યા પછી હવે લેસ્ટરમાં આવી રહ્યું છે એક ધમાકેદાર ઇન્ટરનેશનલ ગુજરાતી કોમેડી નાટક
4: જેઝ એન્ટરટેઇનમેન્ટ લઈને આવી રહ્યા છે સખણા રેજો હસબન્ડજી,
3: લીના શાહ અને સમીર શાહ સાથે હાસ્યનો ફૂલ ડોઝ 28 જૂન પીપલ સેન્ટર લેસ્ટરમાં બે શાનદાર શોઝ બપોરે 8 વાગે અને સાંજે 7 વાગે ટિકિટ્સ બુકિંગ માટે કોલ કરો મિસ્ટર B07860-280-655 મુંબઈ સેન્ડવિચ સ્ટેશન 07834832249 અથવા eventbrite.co.uk. Second, I'll let you, husband G.

0: शानदार म्यूजिक था आरडी बर्मन का, और ऐसे ही बहुत सारे गाने सुनेंगे आप प्रोग्राम के अगले हिस्से में यादें में, क्योंकि आज की यादें में हम बात करने वाले हैं अपने जमाने की सुपरस्टार हीरोइन जिनके आप सभी फैंस हैं, और उनका नाम है साधना शिवदासानी। तो आज यादें में होंगी साधना शिवदासानी, उनकी कुछ बातें और उनके ढेर सारे गाने बजेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ज्योति जी, आपने मैसेज भेजा है और आपने बताया है कि आज आपके बेटे मिडजी का हैप्पी वाला 40th बर्थडे है और आप उन्हें ढेर सारा प्यार भिजवा रही हैं। मम ज्योति, डैड सिकी, हिज वाइफ नीनी एंड चिल्ड्रन रे एंड रेमी प्लस एंटायर मेहता एंड पंड्या फैमिली। और आप चाहती थी कि कोई ये गीत लगा दिया जाए, तो बिल्कुल जो अगला गीत है वो आप सभी की ओर से आपके बेटे मिडजी के नाम पर जाता है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: लेकिन उससे पहले बता दें कि आज 1 पाउंड आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 373 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Get your products advertised across the largest Asian radio network. We are LEICA Radio. Email sales at leicamedia.co.uk. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
0: So Gold Rate is 101.17 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: LEICA Radio.
1: From West Midlands to East Midlands, this is LEICA Radio Midlands. This is LEICA Radio.
3: Are we there yet?
4: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
3: Relax, I've booked the Uber already.
4: How? My roaming isn't even working yet.
3: I switched to Simsy before we left London.
4: Simsy? Since when are you the tech expert?
3: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
6: T's and C's apply.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
8: सिटी बॉन्ड ट्रैवल प्राउडली प्रेजेंट्स यात्रा टूर्स 2026।
9: डिस्कवर कैलाश मानसरोवर, चारधाम, अमरनाथ, श्रीलंका विद अयोध्या, अयोध्या विद काशी, द गोल्डन टेंपल अमृतसर एंड मोर।
8: बुक बिफोर द 31st ऑफ अक्टूबर एंड गेट £150 ऑफ कैलाश और £100 ऑफ एनी अदर यात्रा टूर।
9: ऑल्सो एक्सप्लोर 2026 क्रूजेज
8: फ्रॉम अलास्का टू द कैरेबियन, द मेडिटेरेनियन, जापान एंड कोरिया। विजिट अस एट 5 मिल्टन रोड, लेस्टर, और कॉल सिटी बॉन्ड ट्रैवल ऑन 01162167225। वेयर एट ऑल प्रोटेक्टेड।
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy
14: enjoy 50 plus amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas, greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
12: high appreciation
14: in Dubai.
15: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 02037736333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
16: ગડબડ ગોટાળા છે પ્રોબ્લેમ્સ મોટા છે પણ બધું ઓલરાઇટ છે
17: મેં છે ને બેક ટુ બેક ત્રણ મૂવીઝ જોઈ લીધી
16: ગેટ રેડી ફોર અ ફૂલ ઓન કોમેડી કેઓસ વિથ વિરજ ગિલાની એન્ડ ઉમંગ વ્યાસ ઇન ધ મૂવી બધું ઓલરાઇટ છે
17: બેટર કલાકમાં પાછો આવી જશે ને પછી બધું ઓલરાઇટ થઈ જશે
16: ઇન સિનેમાઝ ઓન 12th ઓફ જૂન ફોર મોર ઇન્ફો વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયાઝ ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ
18: એવું લાગે છે કે પિક્ચર ચાલશે
19: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount, plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
1: New hits on Leica Radio.

0: जी हाँ, लता जी और रफी साहब की आवाजों में था ये गाना, साधना जी की एक बहुत ही प्यारी फिल्म असली नकली से लिया था। और उससे पहले आपने राजकुमार फिल्म का गीत सुना। और लीजिए, दो गीतों के साथ आज की यादें शुरुआत हो गई है। और आप में से बहुत सारे साथियों का कहना है कि साधना जी आपकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं। तो साधना मुझे भी बहुत पसंद है, हालांकि मैंने उनकी ज्यादातर फिल्में नहीं देखी हैं, लेकिन उनके फिल्मों के गाने बहुत ही शानदार हैं। और ऐसे ही कुछ गाने आज मैंने चूज किए हैं, आप सबको बारी बारी से सुनवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले बताऊंगी कि साधना जी के बारे में कहा जाता है कि बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था। और देखिए, हेयर स्टाइल तो ऐसा बनाया कि वो आगे जाकर उसी नाम का हेयर स्टाइल बन गया। 60s और 70s के दशक में उन्होंने खूब काम किया और इतना काम किया, इतना नाम कमाया कि उस जमाने में उनकी फीस आसमान छूती थी। उन्हें फिल्म में लेना एक महंगा सौदा माना जाता था। लेकिन 60s और 70s का दशक हमारे हिंदी सिनेमा का गोल्डन टाइम माना जाता है, और इसी दशक में साधना जी सुपरस्टार रहीं। एक से बढ़कर एक फिल्मों में उन्होंने काम किया है और उनकी काफी डिमांड रहा करती थी। आपको बता दें कि सितंबर में इनकी बर्थडे आती है। इनके फादर ने इनका नाम अपनी पसंदीदा हीरोइन के नाम पर रखा। एक डांसर थी, बंगाली डांसर थी, जिनका नाम था साधना बोस, आई थिंक, और वो इनके फादर की बहुत ही फेवरेट डांसर थी। और इसीलिए उन्होंने सोचा कि जब मेरी बेटी होगी तो मैं उसका नाम साधना रखूंगा, और इसीलिए उनका नाम साधना रखा गया। और इनके जो ताया जी हैं, या कहूँ इनके पिता के जो बड़े भाई थे, वो फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स निभाया करते थे, और उनको देखकर हमेशा साधना जी को लगता था कि मैं भी फिल्मों में काम करूंगी। उन्होंने अपने फादर से कहा कि मुझे भी फिल्मों में काम करना है, तो उनके फादर ने कहा कि थोड़ी जरा मेहनत करनी पड़ेगी, तैयार हो इसके लिए? साधना जी ने कहा, जी हाँ, मैं तैयार हूँ। और बस फिर क्या था, मौका आसानी से मिल गया। फिल्मों में मौका पाने के लिए इन्हें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी जितनी किसी इंसान को सर्वाइव करने के लिए करनी पड़ती है। लेकिन साधना जी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, हर फिल्म में उन्होंने बहुत ही अच्छा अभिनय किया। और ऐसे ही उनके अभिनय से जुड़े हुए कुछ किस्से मैं आपको सुनवाने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल एक गाना और सुनवा देती हूँ। बट उससे पहले
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज ये 1 pound आपको देगा 127.2 भारतीय रुपए। और याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online और by using the Yono SBI UK mobile app. और इसके अलावा आप अगर जून से पहले आप अपना पैसा भारत भिजवाना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है मौका 75 पाउंड्स का वाउचर हर दिन जीतने का, जब आप 1000 पाउंड से ज्यादा ट्रांसफर करते हैं, या फिर एक गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Ye hai Laika Radio.
2: Laika Radio. Laika Radio.
1: Football score updates brought to you by RAC Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू हो गया है, और आज ग्रुप बी में कतर और स्विट्जरलैंड की टीमें भिड़ने वाली हैं, और ब्राजील और मोरक्को की टीम्स भिड़ेंगी ग्रुप सी में। और मैच का हाल क्या होगा आप हमारे यहाँ से सुनते रहेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि आप 15 मिनट का फ्री लीगल एडवाइस हमारे जो इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स हैं RAC Law, उनसे ज़रूर ले सकते हैं अगर आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by RAC Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Yeah, yeah. Laika Radio.

0: लता जी की आवाज में ये गाना लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। गिरीश जी का कहना है कि ये गाना हर किसी के दिल के करीब है और आपने गिरीश जी बिल्कुल सही कहा है। इवन साधना जी के गाने हैं ही ऐसे कि मतलब सुनकर सही में मजा ही आ जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि जब ये फिल्म आई थी तो ये फिल्म और ये गाना ज्यादा पसंद नहीं किया गया था, लेकिन देखिए आज ये फिल्म क्लासिक मानी जाती है और आज इसी फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाती हूँ आपको।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो दरअसल हुआ क्या, राज खोसला ने इस फिल्म को बनाया था। 1964 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म का नाम था वो कौन थी। राज खोसला को जो लोग जानते हैं वो ये कहते हैं कि वो बहुत ही सख्त किस्म के इंसान थे और उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता था। तो ऐसा ही हो रहा था जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी और एक सीन के दौरान साधना जी को सफेद कपड़े पहनकर एक रहस्यमयी मुस्कान देनी थी। साधना जी ने बहुत अच्छा शॉट दिया लेकिन राज खोसला का वो पसंद नहीं आया। उन्होंने गुस्से में साधना से कहा, तुमने ये क्या किया, मुझे चेहरे पर और मिस्ट्री चाहिए और रहस्य चाहिए। साधना जी ने बार बार उस सीन को किया लेकिन राज खोसला बार बार गुस्सा किए जा रहे थे। साधना जी को भी गुस्सा आ गया लेकिन उन्होंने गुस्सा दिखाया नहीं, वो घबराई भी नहीं और बड़ी ही शांति से राज खोसला की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राज जी अगर मैं इससे ज्यादा मिस्ट्री चेहरे पर लाऊंगी तो फिर आप जो फिल्म के अंत में सस्पेंस खोलना चाहते हैं ना, वो अभी खुल जाएगा और दर्शक अभी सब समझ जाएंगे। साधना की बात सुनकर राज जी यानी कि राज खोसला थोड़े हैरान रह गए लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि साधना सही कह रही हैं। दरअसल उनका अंदाज बिल्कुल सही था और बस क्या करते, सबके सामने जब साधना ने उनसे ये बात किया तो उन्होंने तुरंत कह दिया, ओके ठीक है, शॉट ओके है। और इसके बाद से राज खोसला साधना के अभिनय और उनकी समझ के बहुत बड़े फैन हो गए और इसीलिए देख लिए उन्होंने वो कौन थी के बाद उनकी जो एक और मिस्ट्री फिल्म आई थी मेरा साया और अनीता, दोनों में उन्होंने साधना जी को ही साइन किया।
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: आशा जी की आवाज में रवि के म्यूजिक पर सेल्स साधना जी की सुपरहिट फिल्म एक फूल दो माली से लिया था ये गाना।
1: दिस इज रितु शर्मा।
0: और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप किशोर कुमार के फैंस हैं तो तैयार हो जाइए क्रेजी फॉर किशोर के लिए। एक स्पेशल म्यूजिकल नाइट होने वाली है जिसमें जॉय, इंद्रानी, संजय विद हीनल एंड 515 बैंड परफॉर्म करने वाले हैं और ये होने जा रहा है फ्राइडे 19th जून एट द प्रिंस रीजेंट होटल चिगवल एसेक्स। टिकट्स अवेलेबल हैं एट eventbrite.co.uk पर या फिर उन्हें कॉल कीजिए ऑन 0208-514-5400 पर। इस प्रोग्राम के इस शो के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका गोल्ड रेडियो।
2: हेलो हेलो हेलो, वेक अप विद मी काजल ऑन द ब्रेकफास्ट शो वेयर आई टेक यू डाउन मेमोरी लेन, गेट इंस्पायर्ड बाय मॉर्निंग मंत्रा मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स।
1: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
0: तो आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ चुका है और इसका टाइटल है अथ्रो बॉलीवुड रिवाइंड यानी कि अथ्रो बैक ऑफ 2000s और इसे होस्ट किया है अनुज राडिया ने। लाइका पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल और स्पॉटिफाई पर।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Yeah, yeah. Lyca Radio.

0: celebrating 25 years of Gadar. Monday, 15th June, 6 PM onwards. Only on Zee Cinema. Available on Sky 708, Sky Glass 713, Virgin Media 810, BT 395.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
6: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
5: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
7: गड़बड़ घोटाला छे, प्रॉब्लम्स मोटा छे, पर बधु ऑलराइट छे।
8: मे छेने बैक टू बैक त्रण मूवीज जोई लीधी।
7: गेट रेडी फॉर अ फुल ऑन कॉमेडी कियोस विथ वीरज गेलानी एंड उमंग व्यास इन द मूवी बधु ऑलराइट छे।
8: बेतर कलाकमा पाछो आवी जस ने पछि बधु ऑलराइट थई जशे।
7: इन सिनेमास ऑन 12th ऑफ जून। फॉर मोर इन्फो विजिट बकरानिया मीडियास इंस्टाग्राम हैंडल।
9: एवू लागे छे के पिक्चर चालछे।
10: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन।
11: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
13: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर। यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
14: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758-580-180. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
15: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocenter.org. Assuming you want to get noticed.
10: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at LeicaRadio.com and the Leica Radio mobile app.
16: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS at Swaminarayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.

0: लता जी की आवाज में ब्यूटीफुल गाना, साधना जी की फिल्म अनीता से लिया था ये गाना, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक। और बस आज हमने यादें में साधना जी को याद किया। इंतशाब कहती हैं, मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब आप साधना जी को लाएंगी, तो चलिए आज साधना जी आ गई, सुनवाती हूँ।
1: The Ritu Sharma Show, featuring classics non-stop with Ritu Sharma on Leica Radio.
0: आज की यादें का आखिरी गाना।
2: छोड़ कर

0: किशोरदा और लता जी की आवाजों में था ये गाना। और लीजिए दो बैक टू बैक गीतों के साथ प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर की शुरुआत हो गई है। और इस आवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे बहुत सारे साथी सुन रहे हैं और गिरीश जी जो भारत में प्रोग्राम सुन रहे हैं कहते हैं आरडी बर्मन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, ये गाना ऋतु मेरे नाम कर दीजिए। चलिए मैंने आपको ये गाना दिया। एंड विजय जी कहते हैं याद है मैं आज रफी साहब के गीत सुनकर बहुत मजा आया, थैंक यू साथ देने के लिए। SS बोगल जी आपका भी स्वागत है। मानू जी, करसन पिंडोरिया, रानी जी, नंदा प्रवीण, स्वीटी कालरा, आनंद तोमर, इंतशा, फरीदा जी, शरफूड आंटी जी, योगेंद्र जैन एंड ऑफकोर्स हमारी संध्या भावसर, जैस्मीन, सपना एंड परेश व्यास, दिव्या जी, हेना, सुरेंद्र पटेल जो कि हमें जिम में सुन रहे हैं, स्वागत है आप सभी का इस शो में। ऑफकोर्स जासू जी, मिसेस पे के चियांग, रागिनी, रोशनी, बहुत सारे नाम है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं आज के थ्रीवर्स गेम की, क्योंकि इस आवर में हम थ्रीवर्स गेम खेलते हैं। और ये क्या होता है आपको बता दूं कि बॉलीवुड के किसी भी एक गाने से उसकी जो शुरू की 4-5 लाइनें होती हैं उनसे मैं 3 वर्ड्स पिक करती हूं और आपको पहचानना होता है कि गाना कौन सा है। तो आज के जो 3 वर्ड्स हैं वो पहला है सावन, दूसरा वर्ड है अगन, तीसरा वर्ड है बहार। कौन सा है ये गाना? 1972 की फिल्म है, आरडी बर्मन का म्यूजिक है और किशोर कुमार की आवाज है। सावन, अगन, बहार, 1972 की फिल्म, आरडी बर्मन का म्यूजिक और किशोर कुमार की आवाज। कौन सा है ये गाना? अगर आपको पता चल गया है तो अपना मैसेज हमारे इस नंबर पर जरा भिजवाना।
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404-793-719.
0: चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ वर्ड्स। सावन, अगन, बहार, 1972 की फिल्म, आरडी बर्मन का म्यूजिक, किशोर कुमार की आवाज। कौन सा है ये गाना?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आपको याद दिला दें कि आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 127.2 भारतीय रुपए और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। लेकिन अगर आप जून से पहले पहले आपको मौका मिल रहा है, SBI वाले आपको मौका दे रहे हैं 75 pounds का वाउचर जीतने का हर दिन जब आप मनी ट्रांसफर करते हैं ओवर 1000 pounds, और आपको 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक मिल सकता है व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: We hit Leica Radio.
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
5: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
5: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.

0: यस्सी किशोर कुमार का मस्ती भरा गाना शराबी फिल्म से सुन रहा है आपको। और आप सब जानते हैं कि इस बार के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक है हम सभी के फेवरेट, मेरे फेवरेट किशोर कुमार, और उनकी आवाज में ये गाना, और ऐसा सिर्फ किशोर दा ही कर सकते हैं। तो ये गीत हमने आपको सुनवाया और आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं। आप में से बहुत सारे साथियों ने आज के थ्री वर्ड्स गेम को सही सही पहचाना है, और जिन्होंने सही पहचाना है उनके नाम मैं बताऊंगी, लेकिन पहले शुरू करूंगी आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला। और पहला गाना आप सुनेंगे मुकेश जी की आवाज।
1: दिस इज लाइक अ रेडियो फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: थी मुकेश जी की आवाज शम्मी कपूर पर, और ये कॉम्बिनेशन काफी रेयर है। विजय जी सही कहा, क्योंकि शम्मी कपूर के लिए ज्यादातर गाने रफी साहब ने गाए हैं। इनफैक्ट अगला जो गाना है इसी फिल्म से है, शम्मी कपूर पर पिक्चराइज है, लेकिन आवाज उसमें रफी साहब की, जिसे आप सुनेंगे अब से बस थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले बताती चलूं कि मोहम्मद अयूब चौहान कहते हैं, मैं सुबह से आपको सुन रहा हूं और गीतों को एंजॉय कर रहा हूं, तो स्वागत है आपका इस शो में। और उसके अलावा और भी बहुत सारे साथी जुड़े हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि हमारे किन साथी हैं जिन्होंने सही सही जवाब दिया है। तो उनके नाम है दिनेश पोपट जी। क्या बात है, आपने तो कमाल कर दिया। छे आपने आज गाना सबसे पहले पहचाना और बिल्कुल सही पहचाना। तो दिनेश पोपट जी, योर आंसर इज राइट। शालिनी जी, विजय गुडूरी, अरुण टंडन, भरत गंगाराम, उल्लास, महेंद्र बजारिया, रजनीश एंड गुरशरण, स्वाति बेज वोटर से, कसन पिंडोरिया, दिव्या जी हैरो से, रानी सोहानी, दामिनी बेन, शमीम शफीक, जयश्री जी, संध्या भावसर, उषा घोड़ा, गिरीश जी, कुकी, तोशी जी, तोची जी और हमारी किरण जी हैरो से आप सभी ने गाने को सही सही पहचान लिया है। वो गाना मैं आपको सुनवाऊंगी, लेकिन फिलहाल एक और ब्लैक एंड वाइट क्लासिक्स गीत आप सबके लिए।
1: दिस इज रितु शर्मा, फील गुड ट्रैक, brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो चलिए अगला ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का गीत सुनवाने से पहले आपको याद दिला दें कि लाइका रेडियो नेटवर्क तारिक हलाल के साथ मिल रहे हैं और आपके लिए लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं, क्योंकि उनकी नई ब्रांच खुलने वाली है रेनर्स लेन पर वेंसडे 17 जून को, और एड्रेस है 297 रेनर्स लेन, पिनर HA55EJ। फर्स्ट 100 कस्टमर्स को मौका मिल सकता है क्लेम करने का एक गोल्डन टिकट। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ये सब होगा, और अगर आप £1 स्पेंड करते हैं तो आप £50 वर्थ ऑफ फूड आइटम्स भी ले सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होगी। तो याद रखिए, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक लाइका रेडियो नेटवर्क लाइव ब्रॉडकास्ट करेगा। कहां से? तारिक हलाल की नई ब्रांच से, जो है रेनर्स लेन में नई खुल रही है।
3: Super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: खूबसूरत गाना किशोरदा की आवाज में, और ये था हमारे आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना। और ये गीत उन सभी के नाम पर जाता है जो राजेश खन्ना के फैंस हैं।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. Women's cricket updates presented by Carmel Prabhakar are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
2: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
0: तो चलिए आपको बता दें कि आप जानते ही हैं कि ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, और हमारे साथ हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कमल प्रभाकर जी। आइए जानते हैं उनसे क्या अपडेट्स हैं। हेलो कमल जी।
3: गुड आफ्टरनून रितु जी, कैसे हो आप?
0: बढ़िया हूँ, आप बताइए क्या खबर है?
3: बहुत बस एक्साइटमेंट। देखो T20 वुमेन का वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया, कल तो बहुत अच्छा था। इट वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड धूमधाम से स्टार्टिंग किया, और अच्छा गेम भी इंग्लैंड श्रीलंका, सो इंग्लैंड विन यस्टरडे। बट बहुत अच्छा एक्साइटमेंट अभी स्टार्ट हो रहा है कि आज बहुत चल रहा है आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड का मैच, वेयर स्कॉटलैंड ने अच्छी शानदार बैटिंग की, तो 161/5, एंड नाउ यू नो आयरलैंड इज चेसिंग 50/2 इन 9 overs। पर उससे जाती हुई और एक्साइटमेंट है, दिस आफ्टरनून वी गॉट ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका प्लेइंग एंड वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड, तो ये अच्छे अच्छे गेम्स हो गए। बट कीप ऑन लिसनिंग, कीप ऑन वॉचिंग एज वेल सम हाउ ऑन यू नो लाइक अ रेडियो एंड लाइक अ गोल्ड, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। एंड सब बात कर रहे हैं एट द मोमेंट कल की बहुत बड़ी गेम इंडिया पाकिस्तान की, तो वो भी बहुत अच्छी बर्मिंघम में गेम होगी। सो द वर्ल्ड कप इज रियली टेकिंग वेल, बट ऑल द टीम्स आर डूइंग वेरी वेरी वेल।
0: सो थैंक यू कमल जी, थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट्स।
1: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
2: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LEICA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
4: ये है लाइका रेडियो।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज £1 आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 373 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
5: LEICA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
0: So gold rate is £101.17 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
0: तो लीजिए आज का मेरा साथ आपके साथ बस यहीं तक, अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज तक, और न्यूज के उस पार गोल्ड पे होंगे अनुराग, लाइक और रेडियो मैनचेस्टर पर होंगी फजीला, एंड लाइक और रेडियो मिलियंस पर नीरज आपका साथ देंगे। लेकिन हम आपसे कल फिर से मिलेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, कल तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।
1: लाइक अ रेडियो
6: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
7: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
6: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी।
7: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlett Hill, LE54UN.
6: Big deals, big savings, while stocks last.
8: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
9: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
8: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
9: Also explore 2026 cruises
8: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02039 635757. Greens by Danu. Prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
13: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care, Siddhayu. Now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
14: 105 shows pura karya pachi have Leicester ma avi rahyu chhe ek dhamakedar international Gujarati comedy natak
15: Jay's Entertainment line avi rahya chhe sakhna re jo husband ji
14: Reena Shah ane Samir Shah sate hasiyano full dose 28 June People Center Leicester ma be shandar shows bapore 8 vage ane sanje 7 vage tickets booking mate call karo Mr B07860280655 Mumbai Sandwich Station 07834832249 athwa eventbrite.co.uk
16: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 02037736333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल Mantra.
17: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open, from flame grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri, Pepe-licious.
18: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
19: जगदात्री,
18: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है.
19: माला ले आना, लाया जी.
18: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है.
20: टीम, get ready for the action.
18: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री. देखिए रोज रात 8:30 ZTV HD और Z5 पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394.
21: Punjab, the biggest tunes.

वाली है कयामत। मत तड़पा ऐसे तू, न करना इंसाफी, जो गलती करने वाला हूँ मैं उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी।

0: to Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
2: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
3: खुद से भी ज्यादा।
1: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
3: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
1: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT394.
4: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
0: This is the Laika Radio Network, broadcasting across the UK. Did you know you can advertise on this station, Laika Radio Midlands, plus our other offerings, Laika Radio Greater London, Laika Gold Greater London, and Laika Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales at laikamedia.co.uk.
5: His super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavours from around the world, you can make every meal memorable.

0: भी तस्वीर दिल में लगाने से पहले पूछ तो लेना था, उन्होंने अलाउ भी किया या नहीं किया। एनीवे, आपकी अपनी सरिता सवरवाल आपकी सेवा में हाजिर है आज के प्रोग्राम के साथ। होप यू आर वेल, जहाँ भी रहें खुश रहें, खैरियत से रहें, जिंदगी के हर पल को इंजॉय करते रहें और मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते रहें। गाने तो चुन चुन कर लाती है सरिता आपके लिए, और अगर आपकी पसंद की कसौटी पर खरे उतर जाएं तो आप मुझे इस बात का एहसास दिला सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि ये गाना आपने पहली दफ़ा कब सुना था और ये किस फिल्म का गीत है, अगर आपने पहचान लिया हो ये फिल्म कब देखी थी। बहुत सी यादें जुड़ी होती हैं हर गीत के साथ, हर फिल्म के साथ, तो अगर आपकी भी कोई याद जुड़ी हो तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। पहला गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म लाट साहब। ये लाट साहब पहली दफ़ा नहीं आई थी फिल्म, पहले भी बन चुकी है, और पुरानी लाट साहब का भी गीत मैं ज़रूर आज के प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करूंगी। ये गीत जो चुना था मैंने 1992 की फिल्म थी, जिसे सुनील अग्निहोत्री ने डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस किया था, और इसमें थे जैकी श्रॉफ एंड नीलम इन द लीड रोल, और इस फिल्म का संगीत अन्नू मलिक का था, और ये फिल्म 12th जून यानी कल इन 1992 में ये रिलीज हुई थी। 12th of June 1992 में ये फिल्म रिलीज हुई। संगीत भी अच्छा था, अन्नू मलिक का कंपोज किया हुआ गीत आपको ज़रूर पसंद आया होगा, चुराया तूने दिल मेरा वो वाला गाना। और इसमें एक और गीत था वो भी काफ़ी फेमस हुआ था, हिरनी जैसी आंखों वाली, कुमार सानू ने गाया था, एंड दे दो मुझे कुमार सानू की आवाज़ में गाया हुआ वो गीत भी काफ़ी पॉपुलर हुआ। दूसरा गीत मैंने सच में बताऊं तो फिल्म का नाम भी पहले नहीं इतना गौर से सुना हुआ। हरमेश मल्होत्रा ने इस फिल्म को बनाया था, अन्नू मलिक ने इसको कंपोज किया था इसके गीतों को, और इस फिल्म में काम किया था शत्रुघ्न सिन्हा ने, और साथ में थी लीड में हेमा मालिनी। किस किस ने ये फिल्म देखी हुई है अगर हाथ खड़े करते यानी कि मुझे मैसेज भेज दें तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने ये फिल्म देखी हुई है और आपको पसंद आई। और ये फिल्म जो थी ये रिलीज हुई थी 25th of January 1985 में। सो मिले जुले गीत हैं, लेकिन इन दोनों गीतों में एक वर्ड बार बार सुनने को मिला। कौन सा वर्ड था वो बताना चाहें तो जल्दी से मुझे मैसेज कर सकते हैं। लाइक रेडियो नेटवर्क के जरिए ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, चाहे जिस भी जगह बैठे हैं, जौन सी भी सिटी में सुन रहे हैं, जिस भी सिटी में सुन रहे हैं, उम्मीद करती हूँ लाउड एंड क्लियर ये आवाज़ आप सब तक पहुँच रही है, और अगर पहुँच रही है तो मुझे ज़रूर अपने होने का एहसास दिलाइएगा। और अगला गीत भी बहुत खूबसूरत गीत है, लेकिन उससे पहले और भी बहुत से काम है, जैसे कि ये
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you up to 127 rupees and 15 paisas today. And send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates. Brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: राइट भाई, फीफा वर्ल्ड कप हो रहे हैं और इस वक्त अभी मैच शुरू नहीं हुआ है। ग्रुप बी का मैच होगा रात 8 बजे कतर एंड स्विट्जरलैंड के बीच में, एंड ग्रुप सी का ब्राज़ील एंड मोरक्को के बीच में, एंड ये होगा हमारे यूके टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे। और ग्रुप डी का मैच हो चुका है यूनाइटेड स्टेट्स एंड पैराग्वे के बीच में, एंड 4-1 से यूनाइटेड स्टेट्स जीते। And don't forget, you can get your 15 minutes free legal advice with our sponsors, Ruck Law, if you mention Laika. So, is baat ka bhi dhyan rakhiyega.
1: This update was sponsored by Ruck Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Sarita Summerwall with the biggest classics on Laika Radio.
2: लिस्टर इतना सस्ता डील देखा है कभी
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी
2: समारा ब्लैक टी 1 kg 399 एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99 फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 399 लैला बासमती राइस 10 kg 11.99 सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 199 फाल्कन रेड लेंटल्स 1.5 kg 24.399 पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 199 फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1 फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 Assistant Street, LE1-2JU, ya Rowlett Hill, LE5-4UN.
2: Big deals, big savings, while stocks last. Father son no bond jitlo special che, itli j special film aavi rahi che.
4: Uncle tame pehla thi aawaz chho.
5: Aava itle keva.
2: Dharma Productions presents Zindagi Once More.
5: મારો બાપ બનવાની કોશિશ કરે તું બુદ્ધિ વેચી આવે છે તું અરે જિંદગી એવી મોજ થી જીવજે કે જિંદગી ખુદ તને આવીને પૂછે
2: આ ફાધર્સ ડે ફીલ ધ ઇમોશન્સ લવ એન્ડ ફેમિલી મોમેન્ટ્સ વિથ જિંદગી વન્સ મોર ઇન સિનેમાસ ઓન 19 જૂન ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયા ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ
5: તો થઈ જાય જિંદગી વન્સ મોર
2: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039 635757 Greens by Danube Prime location
2: High appreciation
6: In Dubai
7: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026
8: Discover Kailash Mansarovar Chardham Amarnath Sri Lanka with Ayodhya Ayodhya with Kashi The Golden Temple Amritsar and more
7: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour
8: Also explore 2026 cruises
7: From Alaska to the Caribbean the Mediterranean Japan and Korea Visit us at 5 Melton Road Leicester or call Citybond Travel On 01162-167-225 We're at all protected
9: 105 shows pura karya pachi Have Leicester maa avi rahiu chhe Ek dhamakedar international Gujarati comedy natak
10: Jay's Entertainment line avi rahiya chhe Sakhna re jo husband ji
9: Leena Shah ane Samir Shah saate Hasiyano full dose 28 June People Center Leicester maa Be shandar shows Bapore adi vage ane Sanje 7 vage Tickets booking maate call karo Mr. B 07860-280-655 Mumbai Sandwich Station 07834832249 athwa eventbrite.co.uk sakna rajo husband ji
11: tasty swag and sweet charm every spoon feels like a tropical warm make puri and amras or milkshake full taste itna pure ho jaye happy soul
12: mango season has arrived you're also with jaimin's mango pulp no added preservatives or colors only purest taste of mangoes
11: jaimin foods mango pulp available now
13: kuch exciting khane ka man hai to aao egg junction leicester यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स सबके लिए कुछ न कुछ है 62-64 बेलग्रेव रोड LE4-5AS पर चाहे डाइन इन करो टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ कॉल कीजिए 01163325100 एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सवे में तो है अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
14: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
15: Four beers, please, garçon!
14: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
1: Did you know that Laika Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7, and with your favourite presenters live. Get the tune-in details at laikagold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: फिल्म का नाम था आमने सामने, 1967 में आई थी ये फिल्म, और मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस खूबसूरत से गीत को गाया। वो मेरे साथ ही जो बराबर मुझे मैसेजेस लिखकर भेज रहे हैं, थैंक यू एवर सो मच। और आपने बिल्कुल पहचान लिया है कि आज के गीतों में क्या कौन सा वर्ड है जो बार बार आ रहा है। मनु जी, निर्मल एंड किरत जी, संध्या भाव सर, संतोष इन हैरो, हंसा वोरा जी, नलिनी जी, सहर जी, उल्लास इन टोरंटो, अर्जुन जी, हर्षा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सोबत खान, आप भी सुन रही हैं, हना, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड महिंद्र पटेल इन क्रॉयडन, विजय गुजरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड हसुमती हसू, थैंक यू। मिस शेख, आपका पीछे रहती हैं, आपका भी मुझे मैसेज मिल गया, थैंक यू। और ये गीत आप तक पहुंचाया था
1: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Ye hai
2: Laika Radio.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: और ये गीत मैंने चुना है फ्रॉम द फिल्म दिल ही तो है से, 1963 की फिल्म थी, सुमन कल्याणपुर की खूबसूरत आवाज जिन्हें हमने हाल ही में खो दिया है, एंड साथ में हैं स्वर्गीय मुकेश जी। इंजॉय द सॉन्ग, आई एम श्योर यू विल गोइंग टू मर्मर दिस सॉन्ग। इस गीत के साथ साथ जरूर आप गुनगुनाएंगे।

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: What a beautiful song. और बहुत सारे मेरे साथियों ने मैसेजेस एकदम भेजे कि उन्हें ये गीत बहुत पसंद आया. थैंक यू लाइक अ रेडियो नेटवर्क टीम अप विद तारिक हलाल फॉर द ओपनिंग ऑफ देयर न्यू रेनर्स लेन ब्रांच ऑन वेंसडे 17th June लोकेटेड एट 297 रेनर्स लेन पिनर HA55EJ. द फर्स्ट 100 कस्टमर्स विल हैव द चांस टू claim a golden ticket on a first come first served basis. Spend £1 only. Ji ha, spend £1 and receive £50 worth of food items. Terms and conditions apply. Laika Radio Network will also be broadcasting live from there from 10 a.m. until 1 p.m. So be there.
2: Laika Radio. सरिता सबरवाल विद योर वीकेंड क्लासिक्स.
1: हाँ भाई, आज तो चोरी की बातें कर रही है. सब गीतों में एक ही शब्द आ रहा है, चुरा लिया, चोरी किया. और ये गीत कैसे मैं भूल सकती थी. दिस इज द हाईलाइट. यादों की बारात 1973 में आई थी ये फिल्म. और फिल्म का ये गाना तो सुपर डुपर हिट हुआ था. आपको याद है मृदु, आपको याद है शहनाज, आपको नहीं विमल राय जी, आपको तो याद होगा. एंड दिनेश पोपट जी, आपको भी.

0: सनम।
1: आशा भोसले एंड मोहम्मद रफी साहब की आवाजों में गाया हुआ ये गीत पिक्चराइज हुआ था जीनत अमान एंड विजय अरोड़ा पर। किस किस को याद है विजय अरोड़ा जी के बारे में? अगर याद है तो बता दें।
2: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.

बैक टू बैक दो गाने आपने सुने, एक गीत था फ्रॉम द फिल्म प्रेम बंधन और दूसरा गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म, कौन सी फिल्म थी याद कीजिए, याद कीजिए, सरिता खुद भूल रही है होगी प्यार कीजिए।

0: गीत दोनों ही गीत बड़े जबरदस्त थे, उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किए। इंतजाम आपने लिखा है एब्सोल्युटली लविंग योर प्लेलिस्ट, थैंक यू सो मच हरीश ग्रुटा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से साथ देते रहे। अर्जुन जी थैंक यू, एंड प्रज्ञा थैंक्स आपका भी। अब प्रोग्राम के बाकी इस सावर के बाकी के गीत मैंने एक ऐसे राइटर ऐसे लिरिसिस्ट के चुने हैं जिन्होंने बहुत से देश प्रेम के गीत लिखे, लेकिन उनके फिल्मी गाने भी काफ़ी मशहूर हुए। नाम इनका प्रेम धवन जी। प्रेम धवन जी को आज हम याद कर रहे हैं, आज उनकी जन्म तिथि है और उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर 13 जून 1923 में उनका जन्म हुआ था, तो उनके कुछ गीत मैं प्रोग्राम में शामिल कर रही हूँ। अगर आपकी कोई पसंद है प्रेम धवन जी का कोई लिखा हुआ कोई गीत या कंपोज किया कोई गीत आप सुनना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट भाई, अगर इनके जरिए पैसे आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो योर वन पाउंड इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू टुडे अप टू 127 rupees and 15 paise. सेंड मनी टू इंडिया वाय SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ 75 pounds वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds एंड ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds. Terms and conditions apply.
1: India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: Right, Group B का मैच होने वाला है कतार एंड स्विट्जरलैंड के बीच में और ये रात को 8 बजे शुरू होगा. एंड ग्रुप सी का मैच है ब्राजील एंड मोरक्को के बीच एंड इज गोइंग टू स्टार्ट एट 11 PM टुनाइट. और ग्रुप डी का मैच हो चुका है यूनाइटेड स्टेट्स एंड पैराग्वे के बीच में एंड स्कोर वॉज 4-1. सो आप हमारे साथ देते रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे. डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 minutes free legal advice with our sponsor Rack Law if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
4: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203 7736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.

0: एक फूल दो माली, इस फिल्म से चुना था मैंने इस गीत को और प्रेम धवन जी को हमने याद किया. लेजेंडरी प्रेम धवन वॉज अ लिरिसिस्ट, म्यूजिक कंपोजर, कोरियोग्राफर एंड अ वेरी गुड डांसर एंड एक्टर हु इज best known for his iconic songs like ए वतन तुझको मेरी कसम, मेरा रंग दे बसंती चोला, अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, आ लग जा गले दिल रुबा, अजब तेरी कारीगरी, ऐसे बहुत सारे गीत उन्होंने लिखे हैं. उन्हीं में से ये गीत मैंने चुना था. उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया.
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और प्रेम धवन जी का जन्म हुआ था आज ही के दिन इन 1923 इन अम्बाला हरियाणा. और कैसे ये फिल्मों में आए बहुत कुछ बताना चाहती हूँ लेकिन वक्त कितनी तेज़ी के साथ दौड़ता है. सबसे पहले तो ये बता दूंगी कि किशोर कुमार फैंस के लिए एक खुशखबरी है. गेट रेडी फॉर क्रेजी फॉर किशोर जो हैं, जो लोग बहुत किशोर जी की आवाज़ को पसंद करते हैं उनके लिए स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग जॉय, इंद्रानी, संजीव एंड हीनल एंड 515 बैंड. इट टेक्स प्लेस ऑन फ्राइडे 19th जून एट द प्रिंस रिजेंट होटल चिगवेल एसेक्स में. टिकट्स अवेलेबल एट eventbrite.co.uk और कॉल 0208-514-5400. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो, लाइका गोल्ड रेडियो.
1: सरिता सबरवाल विद द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइका रेडियो.
0: एक और बड़ा ही शानदार सा गीत है आ लग जा गले दिलरुबा, 10 लाख का ये गीत और 10 लाख के और गीत भी बहुत खूबसूरत है, इन्हीं के लिखे.

0: जग जग ले दिलजुबा।
1: ऐसे मीठे मीठे गीतों के बीच में हमें अगर क्रिकेट अपडेट भी मिलती रहे तो कैसा रहेगा। कमल जी हैं मेरे साथ और आइए उनसे सुनते हैं क्या चल रहा है क्रिकेट के मैदान में।
2: Women's cricket updates presented by Carmel Prabhakar are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
3: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
1: Kamal ji, welcome.
4: गुड आफ्टरनून।
1: कौन से मैदान में आप कौन से मैदान में हैं? साउथहैम्पटन में हैं या ओल्ड ट्रैफर्ड में, कहाँ पर हैं?
4: अभी तो साउथहैम्पटन में हैं, पर अर्ली ऑन जो गेम था आज ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में ओल्ड ट्रैफर्ड।
1: ओके,
4: व्हाट ए गेम सरिता जी। ऑस्ट्रेलिया स्कोर 172 फॉर 8 इन 20 ओवर्स एंड साउथ अफ्रीका इज चेसिंग, दे आर 104 फॉर 8, 4 ओवर्स टू गो। सो ये तो लग रहा है ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू विन कम्फर्टेबली।
1: जी जी।
4: और सुबह जो मैच हुआ था स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड से,
1: जी जी,
4: वो स्कॉटलैंड इजी से जीत गए। और बड़ा मैच आज और हो रहा है वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड, वो 6:30 स्टार्ट होगा तो उसका पता लगेगा। बट माहौल बहुत ही अच्छा है बिकॉज द वर्ल्ड क्रिकेट ऑफ T20, it's amazing for this women cricket का beautiful weather, beautiful audience, बहुत अच्छे supporters।
1: और कल का तो बहुत इंतजार रहेगा जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला है।
4: सरिता जी, that is the ultimate a massive game in terms of cricket। इंडिया पाकिस्तान के सभी matches अच्छे होते हैं तो ये तो अभी शो करेगा दोनों से। यू नो बोथ हैज गुड टीम, इंडिया हैज गॉट अ स्टेडी टीम, पाकिस्तान हैज जस्ट मेड अ न्यू टीम, यंग टीम कमिंग अप फॉरवर्ड।
1: गुड गुड लक टू बोथ ऑफ देम। कमल जी थैंक यू सो मच, वी विल बी टॉकिंग टू यू लेटर अगेन। थैंक यू, बाय बाय। ये थे कमल प्रभाकर जी।
2: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
3: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LEICA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
2: Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio.
5: Leica Radio.
2: Leica Extra Podcast Update.
1: Right, आपको बता दें कि एपिसोड 20 इज आउट नाउ एंड टाइटल है बॉलीवुड रीवाइंड, अ थ्रोबैक टू 2000s, होस्टेड बाय अनुज राडिया। एंड वाज दिस डेकेड a perfect mix of stars, songs and romance? Did the era redefine Indian cinema for NRIs? ये सब बातें उसमें डिस्कस होंगी। एंड Leica Extra पॉडकास्ट अगर आपके पास नहीं है तो इट्स अवेलेबल ऑन Spotify, YouTube, Amazon, Apple एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
2: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
6: We hit Leica Radio.
7: Surinderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella is guaranteed this seat panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click rifcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surinderella goes back into the Bollywoods.
8: Radio partner Leica Radio.

0: सुमन कल्याणपुर जी की यंग आवाज में आपने ये गीत सुना फ्रॉम द फिल्म गीत। इस गीत को लिखा था प्रेम धवन जी ने और आज हमने इस आवर में प्रेम धवन जी के कुछ गीत शामिल किए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। वैसे इस फिल्म के सारे गाने बड़े मशहूर हुए थे लेकिन दिस वॉज लिटिल बिट अंडर रेटेड गाना, पर बाकी के गीत कुछ आनंद बख्शी साहब ने लिखे, हसरत जयपुरी साहब ने, लेकिन प्रेम धवन जी ने लिखा था सिर्फ और सिर्फ ये गाना।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: A pound in your pocket can get you Indian rupees 127.64, Pakistani rupee 373.17, Sri Lankan rupee 449.43, Bangladeshi taka 164.64, Afghani is 86.26 and US dollars 1.34.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Radio. LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Right, gold rate is worth £101.17 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116-266-4278. Leica Radio.
2: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
0: This is one of my favorite song. और ये फिल्म भी मेरे दिल के बहुत करीब है। And this is the only film I watched with my father. काबुलीवाला।

What a beautiful song. और एक अरसे के बाद इस गीत को मेरे प्रोग्राम में जगह मिली. मुझे उम्मीद है कि आपने इस गीत को उतना ही इंजॉय किया होगा जितना कि मैंने किया. एंड अगर आपने ये गाना पहले सुना और बहुत पसंद किया और सोच रहे थे कि कभी प्ले नहीं हुआ, तो आज प्ले हो गया. फिल्म का नाम था इंसान और इंसान 1985 में आई थी ये फिल्म. और बहुत खूबसूरत गीत है जो मैंने प्रोग्राम में शामिल किया. एंड इस फिल्म में किसने काम किया था, डू यू नो? वेल, 1st of January 1985 में ये फिल्म रिलीज हुई थी. एंड आर्टिस्ट कौन कौन थी, अगर आपको पता है तो जल्दी से मुझे फ़ोन करके, वेल व्हाट्सएप करके बता सकते हैं.

0: इस हफ्ते के हमारे आर्टिस्ट किशोरदा की आवाज़ में आपने ये गीत सुना और उनके साथी भी थे बहुत से और बहुत प्यारा गीत था और चुनना किशोरदा के गाए हुए गीतों में से एक गीत चुनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर आपकी कोई चॉइस हो तो मुझे कल के प्रोग्राम के लिए बता सकते हैं। और आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए और आप सभी का थैंक्स करते हुए जो बड़े प्यार से मुझे मैसेजेस लिख रहे हैं हर गीत के बाद मुझे एहसास दिलाते हैं कि ये गाना भी बहुत अच्छा था, ये गाना भी हमें बहुत पसंद आया। तो जो भी गीत आपको पसंद आए उसे अपने ही नाम समझिएगा। और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ा दें और डेयरी वैली वालों की तरफ से गीत आप सब तक पहुंच रहा है।
1: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits. Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: भाई ये वाला गाना मैं प्ले करना चाहती थी लास्ट आवर में लेकिन वक्त नहीं था। और ये गीत भी प्रेम धवन जी ने ही लिखा है। उम्मीद करती हूँ इस गीत को आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। वैसे ये गीत मेरे प्रोग्राम में बहुत कम बजा है पर आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तो इस गीत के साथ साथ आप भी गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। आइए शुरू हो जाइए।

0: और अ ब्यूटीफुल सॉन्ग रिटन बाय प्रेम धवन जी, जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है, और मैंने ये गीत चुना. कुछ ही गीत आपने लास्ट आवर में भी सुने, और नीरज की आवाज़ आप सुनते हैं एक्चुअली लाइका रेडियो पर, और उनके आवाज़ में बहुत दम है, गानों की चॉइस भी बहुत अच्छी है. और कहने लगे कि अभी स्टूडियो में आए और कह रहे नीरज की सरिता जी ये गाना मेरे लिए बजाया. मैंने कहा यस यस, आपके नाम नीरज, दिस इज़ फॉर यू. Oh, you're twinkling. Thank you so much. और उम्मीद करती हूँ सारे के सारे गाने आपको पसंद आ रहे हैं. आज 13 जून को 1923 में इनका जन्म हुआ था, प्रेम धवन जी का, और 7 मई 2001 में वो दुनिया को छोड़ कर गए. लेकिन उनका संगीत, उनके गीत, कोरियोग्राफी जिन फिल्मों में की, जिन फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग भी की, तो आप सभी को याद होगा. पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया था इन 1970 एंड राष्ट्रीय नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था इन 1971. तो ये गीत था डेरी वैली वालों की तरफ से आपके नाम.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Laika Radio.
0: और लाइका गोल्ड पर लाइका रेडियो नेटवर्क के जरिए मैं आप सब तक एक सूचना पहुंचाना चाहती हूं कि लाइका रेडियो नेटवर्क टीम अप विद तारिका लाल फॉर द ओपनिंग ऑफ देयर न्यू रेनर्स लेन ब्रांच ऑन वेंसडे 17 जून, लोकेटेड एट 297 रेनर्स लेन, पिनर HA55EJ. And the first 100 customers will have the chance to claim a golden ticket on a first come first served basis. Spend £1 and receive £50 worth of food items. Terms and conditions apply. Laika Radio Network will also be broadcasting live from there from 10 AM until 1 PM. So इस offer का फ़ायदा उठाइए ना, जल्दी से पहुँच जाइए. अगर आप काम पर नहीं जाते तो ज़रूर वहाँ पहुँचिएगा. And also the much awaited FIH hockey pro league matches between India and Pakistan take place in London on 23rd and 26th June ko. They take place at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre. Get your tickets from englandhockey.co.uk and supported by Laika Radio Network.
1: LYCA. This is Laika.
2: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
0: Another song by Rafi Saab, Dur Ki Awaaz hai film ka naam, 1964 mein bani thi ye film.

0: वेल चाहे तो आप भी मदद कर सकते हैं, इनका दिल खो गया है, कहीं आपके पाँव के तले तो नहीं है। राइट, ओके, रजिंदर सिंह कालरा जी आप भी सुने, स्वीटी कालरा जी आप भी, आपने एक गाने की रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचाई है, प्रेम धवन जी का लिखा हुआ गीत, ओपी नैयर का संगीत, और आपने कहा राजकुमारी जी ने गाया वो गीत, वो 1952 की शायद फिल्म है आसमा। सो आई एम रियली सॉरी, मेरे बाद विंटेज गोल्ड प्रोग्राम आ रहा है तो उसमें ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं कह सकूँ सैंडी जी को कि प्लीज़ वो गाना शामिल कर दें।
1: Holiday breaks are brought to you by South All Travel.
0: Right, make this summer memorable with the South All Travel. Explore beach breaks, city escapes and more with holiday deals that includes flights, hotel and atoll protection, and trusted for over 40 years and winners of the British Travel Award. Visit South All Travel or call 0208-574-8410, इस नंबर पे आप उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
1: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: Leica Radio. City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
3: Discover Kailash Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
2: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
3: Also explore 2026 cruises
2: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're atoll protected.
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
2: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
6: अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा।
7: महाराजा टूर्स ला रहे हैं कैप्टिवेटिंग चाइना 2026, शंघाई, बीजिंग, शान और चेंगडू का अनफॉरगेटेबल सफर, ग्रेट वॉल, टेराकोटा वॉरियर्स, हाई स्पीड ट्रेन्स और एडोरेबल पैंडास, फ्लाइट्स, होटल्स, इंडियन खाना और गाइडेड टूर्स सब इंक्लूडेड फ्रॉम £3,299 पर पर्सन। विजिट महाराजा टूर्स.co.uk या कॉल 07956154846.

0: This weekend, join the Disha Rice Tasting at Falcon Store, Leicester, Worley Superstore, Birmingham, and Umrah Supermarket, Walsall Town. Taste the premium quality in every grain. Disha Basmati
1: Rice. हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
2: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
1: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
3: मॉम आई डोंट नो व्हाट टू डू एनीमोर माय हेयर इज गेटिंग वर्स आई ट्राइड एवरीथिंग नथिंग वर्क्स
4: बेटा यू आर नॉट अलोन फॉर 5 जनरेशंस आवर फैमिली ट्रस्टेड वन thing pure herbal care amla bringraj neem real ingredients not chemicals
3: so where do we find something like that now
4: right here in london baidyanath sidhayu hair oil shampoo and toothpaste pure ayurvedic premium and made the way our eldest used it
5: from the house of baidyanath with over 100 years of ayurvedic legacy sidhayu now available in falcon cash and carry leicester and nottingham
6: like a radio network Proud hospitality partner, Ragasan. New hits on Leica Radio.

0: Listen to the freshest hits added daily on Leica Radio.
1: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
2: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
3: खुद से भी ज्यादा।
1: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
3: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
1: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT394.
4: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes. Because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
0: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk.
5: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: ये है लाइका रेडियो 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टर मां आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक
1: जेज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रे जो हसबंड जी
0: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्य नो फुल डोज 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मां बे शानदार शोज बपोरे 8 वागे अने सांजे 7 वागे टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655 मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk सखणा जो हस्बैंड जी
2: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना एक्साइटिंग होता है क्योंकि वो नया होता है
3: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
4: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है
3: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2 in cinemas June the 19th.
5: Maa, dulhan ke liye makeup.
3: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
6: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
7: No more worries for me or you.
8: Southall Travel, at all protected.
9: Packed for the trip? Gifts? Passport?
10: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
9: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
10: Simzy?
9: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
3: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
0: Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations.
11: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
12: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
11: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
12: दिल तो टूट पे किया.
11: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
13: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
11: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी. गंगा माई की बेटियाँ हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394.
14: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलिशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में.
0: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. The sounds of love across the Midlands. The love sound. This is Leica Radio.

0: Laika Radio. भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
1: फोन 02085748410।
0: 2400 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram.
3: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HAMARIRAM10 for a 10% discount on all shows and tickets.
2: Exclusive radio partner, Laika Radio.
4: CTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
5: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
6: खुद से भी ज्यादा।
4: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
6: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
4: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे CTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT394।
7: 40 मिलियन पीपल listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
8: The sounds of love across the Midlands. This is Laika Radio.